0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम बांग्लादेश विदार ढाका सकाल छटा
1: आज मंगलवार 5 ज्येष्ठ 1433 बंगाब्द पहला जिलहज 1447 हिजरी 19 मे 2026 ख्रीष्टाब्द
0: सुंदरी सकाले श्रोतादेर प्रति रइल आमादेर प्राणठाना भालोबासा अनेक अनेक प्रीति और शुभेच्छा শুরু হলো আমাদের আজকের অধিবেশন। অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে ঢাকা ক মিডিয়াম ওয়েভ 693 কিলোহার্টজ, FM 106 মেগাহার্টজ এবং